0: कि एक समय तम बने दे बाद में जो माता से रही तक इन पर नो नियो बोले अफेट जो वाटा साउदी बाकुमला से नहीं ना पूजा बक्की ने पिसन
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.